आवाज की दुनिया के दोस्तों, महक में आपका आदर है, अभिनंदन है और सुखदेव जसवाल का सादर नमस्कार है। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं, सुखदेव जसवाल।

बहुत समय के बाद आज एक बार फिर आपके साथ रेडियो पर और इस बेतार की दुनिया पर आपसे मुखातिब हूँ। कुछ समय के लिए मैं नहीं आ सका कार्यक्रम आपके लिए पेश करने के लिए, कारण कुछ सेहत की प्रॉब्लम थी। मेरी सेहत कुछ बिगड़ गई थी और उसे सुधारने में 3 महीने लग गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो 3 महीने नहीं 3 साल थे। और अब जब आपके सामने आया हूँ तो मुझे लगता है कि रूबरू आपके सामने आकर और अब जब आपके सामने आया हूँ तो मुझे लगता है कि रूबरू आपके सामने आकर

में अक्सर ऐसा होता है कि एक गीत हीरो भी गाता है और हीरोइन भी गाती है, और अलग अलग समयों पर कहानी के मोड़ पर ये होता है, और दोनों गाने सुपरहिट हो जाते हैं। और इन्हीं गानों को सेलिब्रेट करने आज आपके लिए आया हूं, उन्हें पेश करने। परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, उनको देंगे हम श्रद्धांजलि। अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी की लड़ाई अगर किसी ने शुरू की तो वो शुरू की मंगल पांडे ने, उनको श्रद्धांजलि देंगे आज अपने कार्यक्रम में। और हम फिजिसिस्ट जयंत नार्लिकर, जो भारत के मशहूर एक फिजिसिस्ट रहे हैं, उनको भी हम याद करेंगे आज के कार्यक्रम में, महक में, और आपकी फरमाइश लेंगे। अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान है, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02-9816-2777, 02-9816-2777, और बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जो दो आवाज़ों में गाया गया हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका गाना आप तक लाने की। और अपनी बात भी आप इसी तरह से 02-9816-2777 पे पहुंचा सकते हैं, और अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं हमारी ईमेल पर mahakradio@yahoo.com, mahakradio@yahoo.com, और आपके सुझावों का हमें हमेशा ही इंतज़ार रहता है, इसलिए अपने सुझाव भेजते रहिए। तो आइए चलें, कार्यक्रम शुरू करते हैं आज, एक गीत दो आवाजें। तो ऐसा हुआ कि ये जो गाना है ये फिल्म सरस्वती चंद्र से है, और सरस्वती चंद्र का ये गाना दो आवाजों में है, लता जी और मुकेश जी। पहले जो इसका वर्जन जो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूं वो है लता जी की आवाज़ में, और इस फिल्म में हीरोइन थी नूतन जी, उनकी एक बहुत ही यादगार फिल्म है। तो इसे सुनते हुए 02-9816-2777 हमारा नंबर।

और जब मुकेश जी ने इस गीत को गाया तो वही अंदाज, वही बात, वही बोल, लेकिन अलग आवाज, और सबने झूम झूम के गीत को सुना, चंदन सबदन चंचल चितवन।

15 जुलाई बीबीसी हिंदी समाचार आया कि दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी का कॉकरोच जनता पार्टी पूरा नाम है उसका कॉकरोच जनता पार्टी उसका नीट जो कि एक इंडिया वाइड एग्ज़ाम है जहां से मेडिकल की भर्ती होती है मेडिकल में सीट्स मिलती हैं लोगों को उस एग्ज़ाम का पेपर लीक मामले के विरुद्ध प्रदर्शन जारी है प्रदर्शन में लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट और क्लाइमेट चेंज कैंपेनर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के 22 दिन पूरे हो चुके हैं उनका वजन 9 किलोग्राम के करीब कम हो चुका है आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका यानी सोनम वांगचुक का समर्थन किया और अनशन समाप्त करने की अपील की फिल्म जगत के प्रकाश राज और पंजाबी सिंगर काका भी उनके समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे लेखिका अरुंधति रॉय अभिनेत्री नसीरुद्दीन अभिनेता माफ कीजिए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह अभिनेत्री रत्ना पाठक इकोनॉमिस्ट जयति घोष उनके समर्थन में उतरे हैं सोशल मीडिया पर अभिनेता अभय देओल अभिनेत्री जीना तमान ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है जनसत्ता 15 जुलाई बुधवार को फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी आवाज मिलाई केवल वही व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है जो सच न्याय और इंसानियत पर विश्वास करता हो मुझे सोनम वांगचुक जैसा मुझ में उन्होंने कहा मुझ में सोनम वांगचुक जैसा साहस नहीं है लेकिन सत्ता में बैठे लोगों की चुप्पी इतनी तेज सुनाई दे रही है कि उनकी जो है बात उनकी दोषी मानसिकता और दोषी सोच का सबूत दिख रही है मैं इस बहादुर इंसान के साथ खड़ा हूं और कल 20 जुलाई को संसद भवन की तरफ की मार्च का दिन भी है देखना है कि कल क्या होता है लेकिन अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने एक्स जो कि सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है वो एक्स पर जब सरकार लोगों की आवाज़ सुनना बंद कर देती है तब सवाल उठाना और भी ज़रूरी होता है ऐसा कहा अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने ये सिर्फ सोनम वांगचुक का मुद्दा नहीं है बल्कि लोकतंत्र और न्याय के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले हर व्यक्ति से जुड़ा सवाल है दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली स्टेट के सॉलिसिटर जनरल दिल्ली सरकार सॉलिसिटर जनरल को उनके द्वारा दिल्ली सरकार को आदेश दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने जिंदगी कीमती है यानी सोनम वांगचुक की जिंदगी कीमती है सरकारी डॉक्टर रोजाना सोनम वांगचुक की सेहत की जांच करें और बचाने की हर संभव कोशिश करें आज के बीबीसी हिंदी समाचारों के अनुसार सोनम वांगचुक ने 22वें दिन भूख हड़ताल समाप्त करने से इनकार कर दिया है उन्हें जबरदस्ती पुलिस उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई है और वहां दाखिल करा दिया गया है और लेकिन उन्होंने किसी तरह से भी चाहे जैसे इंट्रावीनस होता है जो नसों के थ्रू दिया जाता है या मुंह से कोई भी चीज़ स्वीकार करने से मना कर दिया है तो देखते हैं आगे समाचार क्या आता है लेकिन कुछ जो बातें सामने आई हैं और जो अभी आपने समाचारों में सुनी हैं उनके अनुसार तो लगता नहीं कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें कि
सोनम वांगचुक की जान बचने के उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन आपकी फरमाइश की उम्मीद बहुत है, क्योंकि अगला गाना फरमाइशी गाना है और ये है हेमंत कुमार जी की आवाज़ में। गाने के बोल हैं लहरों पे लहर, और हेमंत कुमार जी के वर्जन का ये गाना तो आपने अक्सर सुना ही होगा।

और यही गाना आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आया था नूतन जी की आवाज में, और नूतन जी का साथ दिया था इस गाने में, फिल्म छबीली का था ये गाना, और उनका साथ दिया था कायसी मेहरा ने। क्यों हमें याद मालूम नहीं है, शायद हेमंत कुमार जी का जो वर्जन है वो अलग से ही देना चाहते थे फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी, लेकिन जो भी था ये वर्जन जो नूतन जी की आवाज़ जिसमें शामिल है आप सुनकर हैरान होंगे।

0: बहुत ही एक सोज वाला गाना और दो वर्जन उसके, एक नूतन जी और कायसी मेहरा जी की आवाज़ में और एक हेमंत कुमार जी की आवाज़ में। और अब समय है 2:25 स्टूडियो की घड़ी में और अब पेश हैं आपके लिए कुछ संदेश और संदेशों के बाद जारी रहेगा कार्यक्रम एक गीत दो आवाज़ें।
1: Where's a great place to socialise or hold a function?
2: The Bizzo, Club Eastwood, with its ultra-friendly and personal atmosphere.
1: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wines and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold, draft and craft beer with appetising bar snacks.
2: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
1: 2RRR sponsored the Bizzo, Club Eastwood, a great place to meet.
2: The Bizzo, Club Eastwood, on Hillview Road, close by West Parade.
3: Yee-haw! Howdy, partner. Feel like moseying over to the City of Rye's intergenerational seniors line dancing classes? They combine swinging music, fabulous company, fitness boosts, plus the added bonus of learning a new skill that all results in a potpourri of blissful happiness. This group meets on Tuesdays between 1 and 2pm in our Lachlan's Line Auditorium, Jarvis Circuit, North Ryde. For booking details, search Active Creation on Ryde Council's website, ryde.nsw.gov.au, or telephone the City of Ryde on 9952 822.
4: RRR is a not-for-profit community radio station that is dedicated to delivering you grassroots radio in multiple musical styles, points of view, topical programming and multiple languages. To continue our work, we need your support. Please consider making a donation via our website 2rrr.org.au. Thank you for supporting 2RRR, your local sound to the world.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर अपने मनपसंद कार्यक्रम महक में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम आपको पसंद आता हो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए ताकि वो भी आपकी पसंद को अपनी पसंद बना सकें। 3 महीने के बाद आपके लिए मैं आज पेश कर रहा हूँ लाइव कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। कुछ अलग है, अलग ये है कि गीत एक ही होता है लेकिन उसमें आवाज़ें दो होती हैं और दो अलग अलग गीत भी गाए जाते हैं फिल्म में, एक हीरो के लिए और दूसरा हीरोइन के लिए। लेकिन कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो हीरो के लिए ही गाए जाते हैं, जैसे कि ये अगला गाना जो यूं तो रफ़ी साहब की आवाज़ में है लेकिन गाना का वर्जन जो है वो इतना छोटा है कि लगता ही नहीं कि रफ़ी साहब को इस गाने के साथ जस्टिस करने का सही मौका मिला। लेकिन उसके बारे में अमीन सयानी साहब क्या कहते हैं वो आप खुद ही सुन लीजिए।
5: मैं अब आपको देने वाला हूँ एक झटका, एक इलेक्ट्रिक शॉक। रेडी?

0: अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ भाई, फिल्म सारंगा के सुपरहिट गीत को तो मुकेश ने गाया था, मगर ये तो मोहम्मद रफी की आवाज थी, ये कैसे हुआ? अरे साहब, इसी तरह मैं भी चौंका था जब गीतमाला के दोस्त मोहन भंबानी साहब ने मुझे रफी का गाया हुआ ये बहुत ही रेयर, बहुत ही नायाब मुखड़ा भेजा। तो मैंने फौरन सारंगा के संगीतकार मरहूम सरदार मलिक के होनहार बेटे अन्नू मलिक को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि जब ये गीत रिकॉर्ड होने को था तो सरदार मलिक ने इसके लिए मुकेश ही की आवाज चुनी थी, मगर डायरेक्टर धीरूभाई देसाई अड़ गए कि नहीं, मुकेश इतना सुर में नहीं गा पाएंगे जितना रफी गा पाएंगे, और किसी न किसी तरह रफी साहब से मुखड़ा गवाया भी गया। मगर अब सरदार मलिक अड़े कि अरे धीरू भाई, गवाइए इस गीत को मुकेश भाई से और देखिए कैसा सुरीला यादगार तूफान बरपा करेगा ये गीत। और साहब यही तो हुआ।
1: तो पेश है आपके लिए वो वर्जन या वो बात या वो गीत जिसे आवाज दी मुकेश साहब ने और आप सब ने भरपूर प्यार दिया उनको इस प्यारे से गाने के लिए, सारंगा फिल्म के लिए, और बहुत ही मशहूर भी हुआ ये गाना। तो पेश है आपके लिए मुकेश जी की आवाज में इस गाने की वो अदा, वो सुर जो सुनकर सब मदहोश हो गए थे।

अब कभी कभी ये भी होता है, तो ये हुआ ये है कि जो मज़ा आने वाला था आपको वो नहीं आया, क्योंकि गाना जो मुकेश जी की आवाज़ में आपके लिए मैं पेश कर रहा था वो पूरी तरह से आपके लिए नहीं बजा। और अब कोशिश करता हूँ कि यही गाना आपके लिए सही ढंग से सही तरीके से बज पाए और आप इस गाने का पूरा आनंद ले सकें, और मुकेश जी के इस वर्जन को आप सही ढंग से उसका आनंद ले सकें। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा होगा कि कभी कभी यहाँ पर ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारा कोई भी बस नहीं चलता, और हम आपके लिए वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। और उम्मीद है कि इस रुकावट के लिए आप हमें माफ़ करेंगे, और जब तक हम कोशिश करते हैं कि गाना आपके लिए पेश किया जाए सही तरीके से, आप इंतज़ार करेंगे और फिर हम इस गाने का आपके लिए पूरा जो आनंद है वो ला सकेंगे। तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद कम लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन कोशिश जारी है। और मुकेश जी की आवाज़ में भरत व्यास जी का ये गीत और सरदार मलिक जी का ये संगीत। सरदार मलिक, आपको बता दूं कि वो उनके बेटे हैं अन्नू मलिक, जो अपने आप में एक बहुत ही सफल संगीतकार हैं, और उन्होंने बहुत बेहतरीन मॉडर्न म्यूज़िक पर आधारित गाने दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये गाना जो उनके पिताजी की संगीत में है आपको पसंद आएगा और आप इस गाने का पूरा आनंद ले पाएंगे। तो सारंगा तेरी याद में, और बहुत ही प्यारा ये गाना है, लेकिन सुनाने में जो दिक्कत आ रही है वो उम्मीद है हम जल्दी ही दूर कर पाएंगे, और आपके लिए ये गाना जो है सही ढंग से आपको सुना पाएंगे। सारंगा तेरी याद में, और समय हुआ है 3:35 स्टूडियो की घड़ी में। और आइए चलें, कोशिश करते हैं एक बार फिर इस गीत को आपके लिए पेश करने की। और ये गाना जैसा मैंने बताया मुकेश जी की आवाज़ में है, और इसको रफ़ी साहब की आवाज़ में भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो फिल्म बना रहे थे उनको ये बात शायद ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि इसे मुकेश जी की आवाज़ में ही आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। और कोशिश यही की गई कि मुकेश जी की आवाज़ में ये गाना पेश रिकॉर्ड किया जाए, और जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मुकेश जी की आवाज़ में जो वर्जन है वो आप तक लाया जा सके और आप इस गाने का पूरा आनंद ले सकें। फिल्म सारंगा भी अपने आप में बहुत एक सफल फिल्म थी और बहुत मशहूर फिल्म थी, और इसे बहुत ही पसंद किया गया था। तो पेश है एक बार फिर कोशिश फिल्म सारंगा के इस मुकेश जी के वर्जन के गाने में। और थोड़ा सा
मुश्किल ज़रूर हो रही है लेकिन कोशिश यहाँ पूरी जारी है कि मुकेश जी की वर्जन के इस गाने को आपके लिए पेश कर पाऊँ और आप इस वर्जन मुकेश जी के आवाज़ का वर्जन जो है उसका पूरा आनंद ले सकें।

मुझे लगता है कि इस कोशिश को यहीं छोड़ना पड़ेगा और ये कोशिश कुछ कामयाब नहीं हो रही है, तो इस कोशिश को यहीं छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले गाने की ओर और कोशिश करते हैं कि वो गाना आप तक ज़रूर सही तरीके से पहुंच पाएगा। तो फिल्म आई थी एक सहरा और बहुत ही एक बहुत बेहतरीन फिल्म थी ये सहरा, और सहरा के गाने भी बहुत ही मशहूर हुए थे और बहुत ही पॉपुलर हुए थे और सबने इसके गानों को भी बहुत पसंद किया था। और इसका एक गाना था तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाएं, और ये भी दो आवाज़ों में था। एक आवाज़ थी रफ़ी साहब की और रफ़ी साहब की आवाज़ का वर्जन का ये गाना पसंद तो किया गया था, लेकिन लता जी की आवाज़ में जो इसका वर्जन था वो भी बहुत ही पसंद किया गया था। और दोनों वर्जन आपके लिए मैं पेश करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है सफलता मिलेगी मुझे दोनों गानों को आपके लिए पेश करने के लिए। तो पेश है आपके लिए तकदीर का फसाना रफ़ी साहब की आवाज़ में।

माफ कीजिए इस रुकावट के लिए और मैं कोशिश करता हूं कि इस रुकावट को आपके लिए दूर कर पाऊंगा और आज कुछ ज्यादा ही मुश्किलें आ रही हैं आपके लिए गाने पेश करने के लिए क्यों ये हम कोशिश कर रहे हैं पता लग जाए क्यों ताकि हम उसे हटा सकें और

0: जी हाँ, ये था रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना, और तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाएं, और फिल्म थी सहरा, और इसी गाने का एक और वर्जन है, और वो वर्जन रफ़ी साहब की आवाज़ में नहीं है, लेकिन वो वर्जन है लता जी की आवाज़ में। और उस गाने को पेश करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, उसका ये लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया हुआ ये बेहतरीन वर्जन। तो पेश है फिल्म सहरा का यही गाना।
1: नहीं नहीं विक्रम, अब इसका होना नामुमकिन।

माफ़ कीजिए, इस रुकावट के लिए कोशिश करता हूँ कि ये रुकावट आपके लिए समाप्त हो जाए और गाना

0: बहुत ही प्यारा गाना और लता जी की आवाज में. और जैसा मैंने कहा, आज कार्यक्रम है एक गीत दो आवाजों का. तो यही गीत जब लता जी ने गाया और आपने पसंद किया, वो तो हम समझ ही गए, क्योंकि ये गाना बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था और सबने इसे बहुत पसंद भी किया था. लेकिन जब इसी गाने को एक बेहतरीन और आवाज़ ने अपनी आवाज़ दी और भारत भूषण जी ने और शालिनी जी ने इसे पर्दे पर निभाया, तो तब क्या हुआ? तो सुनिए वो वर्जन जो दूसरी आवाज़ में है.
1: बहार आई
0: और आवाज़ है रफ़ी साहब की.

राम मंदिर में चोरी हुई और ये समाचार पिछले कई हफ्तों से टेलीविजन, रेडियो हर जगह छाया रहा। राम मंदिर अयोध्या में हुई चंदा चोरी के कांड पर केंद्र सरकार की चुप्पी क्या कहती है, यही है सवाल सबके जुबान पर। और यूपी सरकार भी चुप है, उसके लिए भी ये सवाल सबके लिए ज़रूरी है कि यूपी सरकार भी क्यों चुप है, क्योंकि राम मंदिर तो आखिर यूपी में आता है। सामने आए खुलासों में चढ़ावे में मिली मंदिर की को दी गई वस्तुओं के लिए रसीद ना दिया जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चढ़ावे की नकदी की गिनती के दौरान की गई हेराफेरियाँ बड़ा मुद्दा है। चढ़ावे की नकदी की गिनती के लिए नियुक्त लोगों की नियुक्ति बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर सवाल उठे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लोगों की नियुक्ति बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर सवाल उठे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र

चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इस्तीफा दे दिया और भाग गए। तो क्या अब चंपत राय बच निकला है? अन्य धोखाधड़ियां जो कथित रूप से सामने आई हैं, उनमें से कुछ हैं कि कीमत से ज्यादा कीमत पर मंदिर ट्रस्ट को संपत्तियां बेचे जाना, यानी जमीन 2 करोड़ की और मंदिर को 20 करोड़ में बेच दी गई। क्यों भाई, ऐसा क्या था उस जमीन में? हीरे मोती जवाहरात? जैसे कि 2 करोड़ रुपए की संपत्ति ट्रस्ट को 22 करोड़ में बेचा गया, उसे फैजाबाद बार एसोसिएशन अब मंदिर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, बहुत लंबे लंबे नाम है ये, के पूर्व जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के पूर्व सदस्यों अनिल मिश्रा और गोपाल राय के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए अदालत जाएंगे, क्योंकि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। ये बड़ी एक समस्या है भारत में कि अगर कोई गलत बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जो लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो आप पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखिए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि पुलिस FIR लिखने से इनकार कर देती है और आपके पास कोई भी रास्ता नहीं रहता है उस जुर्म को सबके सामने लाने के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए। लेकिन आपकी फरमाइश हमारे लिए सबसे ऊपर है। और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर चुनकर आया हूँ, जिसमें गीत तो एक ही है लेकिन आवाज़ें दो हैं, वो है फिल्म टैक्सी ड्राइवर का। गाने के बोल हैं, जाए तो जाए कहाँ। तलत महमूद जी ने इस गाने के एक वर्जन को अपनी आवाज़ दी थी।

और यही गाना जब तला जी की जगह आया था लता जी की आवाज में, तो सबने सोचा ये क्या, लेकिन जब फिल्म देखी तो पता चला कि ये गाना फिल्म में दो बार आता है, और दूसरी बार जब लता जी की आवाज़ में आता है तो उतना ही, शायद उससे भी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया इस गाने को।

यही जज्बा था, यही शब्द थे शायद निर्मलजीत सिंह सेखों, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के होठों पर दिल में 17 जुलाई 1945 को पैदा होने वाले लुधियाने के गांव के ईसेवाल में, जब 4 जून 1967 को इंडियन एयरफोर्स में कमीशन पाने के बाद 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स के 18 स्क्वाड्रन में फ्लाइंग बुलेट्स में फुल एंड नेट फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए वो आसमान में उड़े थे श्रीनगर एयरपोर्ट से। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। जैसे ही पहले पाकिस्तानी हवाई जहाज ने हमला किया, बमों के बीच फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन के नेतृत्व में फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने 2 प्लेन्स को के फॉर्मेशन में उड़ान भरी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन किसी कारण दूर निकल गए, उनका संपर्क टूट गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अगले ही क्षण एक सेबर जेट को मार गिराया और दूसरे पर फायर कर दिया और उसे आग के गोले में रजौरी की ओर जाते देखा गया। सेखों के प्लेन पर भी फायर हुआ था। उसे स्क्वाड्रन लीडर वीरेंद्र सिंह पठानिया ने वापस आने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसका प्लेन जो है उस पर बम लग चुका था पाकिस्तानी प्लेन्स का, और प्लेन क्रैश होते होते नीचे की ओर तेज रफ्तार से जा रहा था। आखिरी घड़ियों में इजेक्शन की कोशिश की लेकिन असफल रहे। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन का अंश श्रीनगर एयरबेस के कुछ ही दूरी पर मिला, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के अवशेष पहाड़ी क्षेत्र में नहीं मिल सके। परिवार को अंतिम विदा कहने का मौका भी नहीं मिला।

उनकी बहादुरी के लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और परमवीर चक्र के साइटेशन में लिखा गया ऑन 14 December 1971 श्रीनगर एयरफील्ड वाज अटैक्ड बाय अ वेव ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट इन स्पाइट ऑफ द मॉर्टल डेंजर ऑफ अटेम्प्टिंग टू टेक ऑफ ड्यूरिंग द अटैक फ्लाइंग ऑफिसर से टुक ऑफ एंड इमीडिएटली engaged a pair of attacking sabers. In the fight that ensued, he secured hits on one aircraft and damaged the other. By this time, the other saber aircraft came to the aid of their hard-pressed companions and flying officer Sekhon's Nat was again outnumbered, this time 4-1. Even though alone, Flying Officer Sekhon engaged the enemy in an unequal combat. In the fight that followed at treetop height, he almost held his own but was eventually overcome. And by the sheer number of aeroplanes against him, his aircraft was shot down by a gunfire of one of the sabers and he was killed. The sublime heroism, supreme gallantry, flying skills and determination above and beyond the call of duty displayed by Flying Officer Sekhon in the face of certain death have set new heights in Air Force traditions. National War Memorial Nai Dilli mein Sekhon sahab ke liye ek bust lagaya gaya hai परम योद्धा स्थल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना के परिसर में निर्मलजीत सिंह सेखों का स्टैचू लगाया गया है और डीकमिशन्ड फुल एंड नेट जहाज भी वहां रखा गया है इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम पालम हवाई अड्डे पर भी उनका स्टैचू और हॉल एंड नेट रखा गया है उनके जन्म स्थल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ईसेवाल लुधियाना में उनके बस्ट का अनावरण किया था एयर मार्शल बी आर कृष्णा ने वर्ष 2021 में हम सबका उनको सलाम जय हिंद

बच्चियाँ और हमारे इंडियन एयरफोर्स के सभी बहादुरों के लिए हमारा सलाम और आइए चलें वापस एक गीत दो आवाज़ों की तरफ और क्या बताएं आपको ये जो गाना है ये बहुत ही सबको पसंद आया था फिल्म थी दाग ऐ मेरे दिल कहीं और चल और तलत जी की आवाज़ में जो ये वर्जन है इस गाने का उसे तो सभी जानते हैं और सभी ने बहुत पसंद किया है इसलिए उसकी एक झलक तो ज़रूर आपको सुनाऊंगा

लेकिन जब इसी गाने को आवाज दी तलत महमूद जी की जगह किसने, लता जी ने, और लता जी का ये वर्जन भी सबको बहुत ही पसंद आया। तो पेश है लता जी।

और इसी तरह से एक गाना था जो देव आनंद साहब की फिल्म का था, और देव आनंद साहब की फिल्म का ये गाना जो था उसके बोल थे, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए। और ये फिल्माया गया था, जाहिर है, देव आनंद साहब पर और फिल्म की हीरोइन पर। और जब देव आनंद साहब का वर्जन था वो कुछ धूम धड़ाके वाला था, और इस धूम धड़ाके वाले गाने के इस वर्जन को सुनाने से पहले कुछ ये जो दिक्कत आ रही है उसे हटाने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि ये दिक्कत आपके लिए ना आ सके, और जो है ये गाना आपको अच्छी तरह से सुना सकूं। और तो ये जो गाना था, जैसे मैंने कहा, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए, तो ये जो वर्जन है ये है जो देवानंद साहब पर फिल्माया गया। और अभी भी दिक्कत आ रही है, कोशिश करता हूँ ये दिक्कत ना आए और आप इस गाने का पूरा आनंद ले सकें। और तो आइए चले इस गाने की ओर। देवानंद साहब थे इस फिल्म में, नलिनी जयवंत जी थी और फिल्म थी मुनीम जी। और वैसे तो मुनीम जी को आपने खूब आनंद लिया होगा, लेकिन ये जो गाना है इसका आनंद अलग ही है।

ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित फिल्म सतलुज ओटीटी पर Z5 पर रिलीज की गई, लेकिन दो दिन के बाद ही, क्यों ये कोई नहीं जानता अभी तक, भारत से उसे जो है हटा दिया गया, भारत के बाहर नहीं हटाई गई। अब भारत के बाहर भी सुनने में आया है काफ़ी जगह हटा दी गई है, और नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म भारी संख्या में डाउनलोड की गई, बांटी गई और उम्मीद से कहीं ज़्यादा देखी गई। क्या मिला सरकार को बैन लगाकर? कुछ भी नहीं। और जसवंत सिंह खालड़ा ने कथित तौर पर 1990 के दशक में शुरू में और दशक के पूरा होते होते ह्यूमन राइट्स पर हमलों के विरोध किया था। 25,000 से अधिक लोगों की पंजाब पुलिस द्वारा हत्या और उन्हें लावारिस बताकर उनका संस्कार करना, उसकी छानबीन की उन्होंने और जानकारी सरकार को दी, लेकिन सरकार ने कथित तौर पर कुछ एक्शन नहीं लिया और चुप्पी साधे रखा, और फिर जसवंत सिंह खालड़ा की ही हत्या कर दी गई। यही कहानी है फिल्म सतलुज की। आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिए इस फिल्म को, यह इंटरनेट पर जगह जगह पर अवेलेबल है। संसार भर के देशों में 170 देशों की सूची में भारत 176वें नंबर पर है। अमेरिका की येल, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज के समेत अनेक संस्थानों के साइंटिस्ट के इस इंडेक्स के अनुसार इसमें शामिल होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप अपने प्राकृतिक संसाधन रिसोर्सेज के किस प्रकार संभाले जाते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं उन पर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों में कमी लाने के लिए देश क्या क्या कदम उठा रहा है। इस पर में भारत 177 देशों में 176 देश में 76वें स्थान पर है, यानी नीचे ही नीचे है, और क्या होगा आगे भगवान ही जाने। और अच्छी खबर यह है कि कजाकिस्तान से बैकनोर कोमेडोरोम वहाँ पे है एक जगह जहाँ से के स्पेस फ्लाइट्स जो हैं वो चलाई जाती हैं, और सोयूज MS-29 स्पेसशिप में नासा से आए भारतीय मूल के अनिल मेनन, रूस के कॉस्मोनॉट प्योत्र डुब्रोव और अन्ना किकिन्या के साथ बैकनोर कोमेडोरोम से रवाना हुए। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के साथ काम करेंगे। भारत के लिए बहुत ही एक सम्मानजनक बात है ये, और हमारे लिए सम्मानजनक बात यह है कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए, उसका जो सैड वर्जन है वो फीमेल आवाज में है।

बहुत ही प्यारा ये गाना था, और आपने सुना दोनों वर्शंस में, तो फीमेल और मेल वर्शन में आपको कौन सा वर्शन पसंद आया ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन आप अगर इस बारे में कोई बात करना चाहें तो बहुत आसान है, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02-9816-2777 02-9816-2777, और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहें तो फ़ोन नंबर यही है 02-9816-2777 02-9816-2777, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश आप तक लाने की। तो आइए चले, अगला गाना जो है आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है फिल्म जंगली से, और जंगली के इस गाने को रफ़ी साहब ने और लता जी ने दोनों ने अपनी अपनी आवाज़ें दी थी अलग अलग तौर पर। पहले पेश है लता जी की आवाज़ में।

और यही गाना जब रफ़ी साहब ने गाया था तो उसका अंदाज क्या था ये भी आप सुन लीजिए और आप खुद ही इस पर फैसला कीजिए कि कौन सा अंदाज आपको ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद है दोनों ही अंदाज आपको पसंद आए होंगे, लेकिन कौन सा ज़्यादा आया।

0: और जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि समाज में भी उनकी इज्जत हो, सम्मान हो, लेकिन हमारा भारतीय समाज है कि बदलने का नाम ही नहीं लेता। जनसत्ता समाचार पत्र 16 जुलाई पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को के मान सम्मान को लेकर नाराजगी जताई। पटना हाई कोर्ट के एक जज ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा, महिला की सलवार उतारना और उसके ब्रेस्ट दबाना बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता। ये कैसा जज है हमें समझ में नहीं आता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को संवेदनशीलता पूर्वक बताया और कहा कि ये संवेदनशीलता की कमी है और जजों की ये जिम्मेवारी है कि वो फैसला सुनाने से पहले उस केस के बारे में कुछ रिसर्च करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों के लिए सुनवाई के दौरान गाइडलाइन जारी की हैं कि वो इन बातों का ध्यान रखें और महिलाओं की इज्जत का ध्यान रखें। मेरा विचार, कानून के जानने वालों और देश के माननीय जज अगर ऐसी सोच रखेंगे तो आम आदमी जो देश का है वो क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। खैर, आइए चलें अब कुछ आपके एक आपके लिए संदेश और संदेश के बाद जारी रहेगा महक 2RRR 88.5 FM पर।
1: Part of Bendigo Bank, Community Bank Homebush and North Ryde invest in community outcomes. Radio 2RRR is dedicated to working with local youth through the broadcasting medium, as well as to assist adults who are on their rehabilitation journey. Without the significant support from the Community Bank Homebush and North Ryde, this initiative simply would not be possible.
2: Support the bank that supports your community. Call, email or visit station sponsor Community Bank Homebush and North Ryde. Part of Bendigo Bank, the better big bank.
3: Hi, I'm Rod Pitterino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef's specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
4: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
5: V is for volunteering, and Hunters Hill Council is inviting you to play a crucial role in its community events. As a volunteer, you will be providing valuable assistance to various council events held throughout the year. Would you like to know more? Well, just search Event Volunteers Hunters Hill Council or telephone 9879 9400.
6: Two Triple R would like to thank the CBF, Community Broadcasting Foundation of Australia, for their generous financial support that assists with the daily running of our station. Broadcast training, multilingual programming, technical equipment and community initiatives. Go to cbf.org.au to meet their team and check out their objectives. That web address again is cbf.org.au.
0: संदेश के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर। महक में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक, और पेश करता हूँ मैं सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम आपको पसंद आता हो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। शमी कपूर जी की बेहतरीन फिल्म आशा पारिक जी के साथ आपको मालूम ही है, और उसके ये गाने भी आपको मालूम है। लेकिन आपको मालूम है कि आशा भोसले जी ने इस गाने को अपनी आवाज़ दी थी और वो गाने का वर्जन भी पॉपुलर हुआ था।

और जब रफ़ी साहब ने गाया तो ऐसा पॉपुलर हुआ कि सबके जुबान पर चढ़ गया ये गाना, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा। और असली याओ की शुरुआत यहीं से हुई थी, फिल्म जंगली से नहीं।

जी हाँ, बहुत ही मशहूर हुआ ये गाना और बहुत ही मशहूर हुई कुछ बातें इधर की कुछ उधर की हमारी जन्मभूमि से। अमरीकी नागरिक जॉर्डन ब्राउन जो थाईलैंड में पासपोर्ट खोने के बाद श्रीलंका चला गया, वहां से होता हुआ समुद्री रास्ते से भारत पहुंच गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर उसे हिरासत में ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उसके पास से एक चाइनीज पासपोर्ट मिला, धार्मिक किताबें मिली और एक मोबाइल फोन मिला। दिल्ली में गर्मी के मौसम के प्रकोप के वजह से तापमान 41.3 डिग्री पहुंच गया और हीट इंडेक्स 48 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। एक पॉडकास्ट में प्रियंका चोपड़ा के पति निकोलस जोन्स से पूछा गया, उसे 8 साल की शादी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, तो उसने जवाब दिया बॉलीवुड गॉसिप जो उसे प्रियंका चोपड़ा के द्वारा मिलती है। 18 जुलाई बीबीसी हिंदी ने कहा, हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन सेल से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को कल, लेकिन ये क्या, ट्रेन तो चली नहीं। तो भारतीय रेल ने उसका उसके बारे में बताया कि ट्रेन शनिवार को नहीं, इतवार को चलेगी सुबह 7:30 बजे। जनसत्ता 17 जुलाई, गाजियाबाद के गांव के परिवार की 150 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इसके विवाद में बेटे ने पिता पर 3 गोलियां दाग दी और उनकी हत्या कर दी। और हमारी कर्मभूमि की बातों की बात करें तो मेट्रो लाइन जो टेलावोंग से बैंकस्टाउन तक बनाई जा रही है लेकिन अभी सिडनी तक है, शनिवार इतवार को इसकी सफल टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अक्टूबर में ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी टेलावोंग से बैंकस्टाउन तक। न्यूजीलैंड की अभिनेता सैम नील, जो ऑस्ट्रेलिया के भी चहेते अभिनेता थे और जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों से पूरे संसार के चहेता फिल्म अभिनेता थे, दूसरे दिलों पर राज करने वाले थे, उनका 13 जुलाई सोमवार को सिडनी में निमोनिया के कारण स्वर्गवास हो गया। गैरकानूनी सिगरेट्स का धंधा कथित तौर से जोरों पर है, ग्राहकों को सस्ती सिगरेट्स चाहिए, मिल रही हैं 25 से 35 रुपए की बजाय 5 या 10 रुपए, 10 डॉलर में, 25 या 35 डॉलर की बजाय 5 या 10 डॉलर में। गैर कानूनी संबंधित अपराध बढ़ गए हैं इस वजह से और सिगरेट पीने वालों की गिनती घट गई है, 5.6% है जो 2023 में 15% थी। आखिर माजरा क्या है समझ में नहीं आता। आने वाले दशकों में ऑस्ट्रेलियन महिलाओं को विरासत में मिलने वाला धन 65% होगा, यानी अगर $100 मिलने हैं विरासत में तो $65 महिलाओं को मिलेंगे और ये $3 trillion का होगा और इसे वो कैसे संभालेंगे हम नहीं जानते। लेकिन मनोज कुमार मुकेश जी और शिव कुमार बटालवी, आनंद बख्शी जी का जन्मदिन है अगले सप्ताह, मंगल पांडे जी का जन्मदिन है अगले सप्ताह, जयंत नार्लिकर जी का है, बाल गंगाधर तिलक जी का है, शेखर चंद्रशेखर आजाद जी का है और जिम कॉर्बेट जो कॉर्बेट पार्क्स के निर्माता थे उनका है और चेतन चौहान का है जो क्रिकेटर रहे हैं। और आज एक गीत दो आवाजें गानों के इस कार्यक्रम में अंतिम गाना जिसकी झलक आपको सुनाना चाहता हूं, जब प्यार किसी से होता है फिल्म का टाइटल सॉन्ग और ये लता जी ने भी गाया था और रफी जी ने भी गाया था, तो पेश है लता जी के वर्जन।

कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने को आ गया है, आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सुनने से ही कार्यक्रम सफल होता है। और अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए एक और नया कार्यक्रम लेकर आऊंगा। और तब तक के लिए मुझे सुखदेव जसवाल को आज्ञा दीजिए। और अगला गाना जो अंतिम गाना है कार्यक्रम का आपके लिए जो छोड़े जा रहा हूँ, वो इसी गाने का रफ़ी साहब की आवाज़ का वर्जन है और बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये गाना फिल्म जब प्यार किसी से होता है। देवानंद और आशा पारिक जी की बेहतरीन फिल्म थी ये, और उसका है ये गाना, और इसे आपके लिए छोड़े जाता हूँ। उम्मीद है पसंद आएगा। नमस्कार।

जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो, जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो।

भी तो इस आग में जलते हो, मेरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल पे चुड़ियां चलती है, जब चैन से कोई सोता है। जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ